0: बहुत याद आए बुलाते बुलाते, बहुत याद आए बुलाते बुलाते तुम्हें जिंदगी से लाते मिटाते।
1: Η ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.